अभिया, स्वप्निल और साथियों क्या गाया, ये भक्ति गीत सुन रहे थे। प्रभाती वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं।

अभी आप स्वप्निल और साथियों क्या गाया ये भक्ति गीत सुन रहे थे। प्रभाती वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साधना सरगम के स्वर में ये भजन।

0: साधना सरगम की गाए इस भजन के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम बात करें आम में लगने वाले एक कीट, जाला बनाने वाले कीट के संदर्भ में। आम का जाला बनाने वाला कीट वयस्क मौत के रूप में होता है। इनका रंग भूरा सा होता है। इसकी सुंडियां मठमेले रंग की होती हैं, जिसके शरीर के दोनों तरफ सफ़ेद धारियां होती हैं। सिर पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। इनकी 7 अवस्थाएं होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियां बेलनाकार लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनकी पहली से तीसरी अवस्थाएँ पत्ती के हरे भाग को खाती हैं। प्रभावित भाग पर जाला सा दिखाई देता है। बाद की अवस्थाएं पत्ती के नस को छोड़कर पूरे भाग को खाती हैं। इनकी सुंडियों से लार सा निकलता है और इसी के द्वारा पत्तियों एवं प्ररोहों को आपस में जोड़कर ये जाला सा बनाते हैं और पूरा भाग एक घोंसले या टेंट की तरह पेड़ पर दिखाई देता है। इसलिए इस कीट को टेंट कैटरपिलर भी कहते हैं। इस तरह के कितने ही घोंसले एक पेड़ पर देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, एक घोंसले में कई सुंडियां एवं इनके प्यूपे देखे जा सकते हैं। पूर्ण विकसित होने के बाद सुंडियां सुष्पावस्था या प्यूपा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो भूरे लाल रंग के होते हैं। इनसे 10 से 12 दिन के बाद वयस्क मौत बाहर निकलते हैं। ये अवधि ठंड वाले मौसम में ज़्यादा होती है। पूरा जीवन काल 35 से 38 दिन में पूरा हो जाता है। आम में जाला बनाने वाले कीट का प्रकोप वैसे तो जून में शुरू होता है, लेकिन इसका असर दिसंबर जनवरी तक रहता है। इस कीट की लगभग 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं। अब आइए देखें कि प्रकोप के लक्षण क्या क्या हैं। इस कीट की सूंडियों की पहचान ऊपर हम जैसे बता चुके हैं, इसके आधार पर आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्तियों के बने घोंसलों और जालों को देख कर तुरंत इस कीट के प्रकोप की पहचान की जा सकती है। यदि इन क्षतिग्रस्त टहनियों को हिलाया जाए तो सुंडियां एक लंबे धागे की तरह गिरती हुई दिखाई देती है। ये धागा भी इनकी लार से ही बनता है। इनकी सुंडियां पेड़ की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इससे प्रभावित पत्तियां एवं प्ररोह सूखने लगते हैं। गंभीर प्रकोप होने पर पूरे पूरे पेड़ की पत्तियां और प्ररोह सूख जाते हैं तथा शाखा भी सूखने लगती है। इस कारण प्रभावित पेड़ जले से प्रतीत होते हैं। इससे पेड़ की बढ़वार पर असर पड़ता है और पेड़ के फूल और फल देने की क्षमता प्रभावित होती है। किसान भाइयों, यांत्रिक और कृषि क्रिया द्वारा इन कीड़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है। जून से ही बागों का सर्वेक्षण करना शुरू कर देना चाहिए और जैसे ही प्रकोप शुरू हो, इन कीड़ों की बढ़वार को रोकने के लिए प्रभावित पत्तियों एवं प्ररोह को काटकर जला दें। इस तरह सुंडियों एवं प्यूपों को नष्ट किया जा सकता है। जनवरी फरवरी में खेत की जुताई करने से भी जो सुंडियां जाड़े के दिनों में अंदर चली जाती हैं, उनको आश्रयहीन किया जा सकता है, जिससे कि वो अधिक गर्मी और सर्दी के कारण मर जाते हैं या फिर कीड़ों या चिड़ियों आदि का शिकार हो जाते हैं। जिन बागों में पेड़ बहुत घने हो गए हों और शाखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही हों, उसमें शाखाओं की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। जहाँ तक रासायनिक नियंत्रण का सवाल है, प्रकोप होने पर सुंडियों का नियंत्रण करने के लिए विभिन्न कीटनाशकों की सिफारिश की गई है, जैसे कार्बरिल 0.2%, मोनोक्रोटोफस 0.05% व क्विनोल्फस 0.05%। इस तरह से इन कीटनाशकों में से किसी एक का घोल बनाकर इनका छिड़काव आप पत्तियों पर कर सकते हैं, जिससे कि इन कीड़ों पर नियंत्रण हो सके।
0: अभी आप एग्री टिप्स कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वह संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक

0: company and planet with utmost care. The Indian Embassy in Madrid, Spain, has said that two Indian nationals aboard a hantavirus-hit cruise ship are safe and asymptomatic. The Dutch-flagged vessel MV Hondius, carrying around 150 people, including two Indians, arrived in Spain yesterday and anchored off the Canary Islands following the outbreak. According to the embassy, passengers disembarked in line with protocols issued by the World Health Organization and Spanish authorities. The Spanish National Center for Emergency Monitoring and Coordination said the two Indians who were working as crew members have been evacuated to the Netherlands, where they will undergo quarantine under health safety protocols. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in a last over thriller in Raipur last night. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs, riding on Tilak Verma's 57 off 42 balls. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहांसरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानीचंगा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान कल सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान के लिए एमवी कालीघाट कल 12 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। सिंधु जलियान ननकौड़ी होते हुए कैमल बे जाने के लिए कल 12 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलियान 14 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमल बे से छूटकर ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा ये जलियान। आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा ये जलियान। आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल 12 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलियान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा ये जलियान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी हटबे कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा

0: करेगा। एमवी बाराटन शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 12 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान परसों यानी 13 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में। श्रोताओं, वादा केवल शब्द नहीं, ये विश्वास की डोर है। जो अपने वादे निभाते हैं उनकी हर जगह सराहना होती है, और सच्चा इंसान वही कहलाता है जो हर हाल में अपना वादा निभाता है।

मतवाली आंखों का वो प्यारा सा वादा दिल को चुपकी से भा गया। उन मतवाली आंखों में छुपा प्यार दिल को बेकरार कर गया।

0: श्रोताओ, इसी वादे के साथ अब आज्ञा चाहते हैं कि कल किसी अन्य शीर्षक के गीतों के साथ होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।
2: अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जो केंद्रित था वादा शीर्षक पर, और प्रस्तुत कर रही थी सोनिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस कांड की 235वीं कड़ी।

चित्रकूट जाते हुए श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्रीराम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: अभी आपने सुना रामचरितमानस खान की 235वीं कड़ी। गायिका थी शोभा जोशी तथा संगीत संयोजक थी सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और जनजातीय विकास योजनाओं की प्रगति पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक है चित्रकांत शर्मा।
1: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश में चल रही प्रमुख जनजातीय विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से पिछले सप्ताह एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्यों के जनजातीय कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों ने भाग लिया। बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि ये सभी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित हैं। पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG समुदाय के समग्र विकास के लिए समर्पित है, जबकि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य देश भर के जनजातीय समुदायों का संतृप्ति आधारित समग्र विकास सुनिश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य है विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से पूर्ण रूप से जोड़ा जा सके। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश को मंत्रालय ने अत्यंत महत्वपूर्ण चरण बताया। मंत्रालय के अनुसार अब योजना निर्माण और संसाधन जुटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तथा अब पूरा ध्यान जमीनी स्तर पर कार्यों को तेज करने पर केंद्रित है। सरकार चाहती है कि सभी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ग्रामों में बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। सचिव ने कहा कि आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क संपर्क और आजीविका जैसी सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का आंशिक या विलंबित क्रियान्वयन योजना के मूल उद्देश्य में बाधा मानी जाएगी। उन्होंने कहा अब योजनाओं का मूल्यांकन केवल खर्च के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर प्राप्त ठोस और मापने योग्य परिणामों के आधार पर किया जाएगा। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए त्रैमासिक लक्ष्यों पर भी चर्चा हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों के लिए क्षेत्रवार तिमाही लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर ने सभी मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे इन लक्ष्यों की जानकारी संबंधित राज्य विभागों तक पहुंचाएं। प्रत्येक मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा भौतिक और वित्तीय प्रगति से जुड़े अद्यतन आंकड़े हर महीने साझा करने पर बल दिया गया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि जिला स्तर पर जिला अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों तथा परियोजना अधिकारियों के माध्यम से प्रगति की निगरानी और क्षेत्र स्तरीय सत्यापन सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कई नई रणनीतिक पहलों की घोषणा भी की।

0: की गई। इनमें सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धित जैव संसाधन उद्यम शामिल हैं, जिन्हें CSIR NBRI के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय चिकित्सकों के क्षमता निर्माण के लिए ICMR के सहयोग से विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत जनजातीय जिलों में मलेरिया, कुष्ठ रोग और तपेदिक उन्मूलन मिशन, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की स्थापना, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मॉडल गांवों का विकास, जनजातीय इको टूरिज्म पायलट परियोजनाएं, जनजातीय होम स्टे विकास तथा जनजातीय सौर सहायक कार्यक्रम जैसी पहलों की भी घोषणा की गई। आदि कर्मयोगी अभियान को संस्थागत रूप देने पर भी विशेष बल दिया गया। यह अभियान अंतिम छोर तक सेवा वितरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बैठक में PM जनमन योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। बैठक में बताया गया कि सर्वे सेतु ट्राइबल ऐप के लॉन्च के केवल 20 दिनों के भीतर लगभग 2 लाख परिवारों की प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं। जून 2026 के अंत तक 12 लाख प्रविष्टियों का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के समापन पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा, मंत्रालय एक सहयोगी, संवेदनशील और जवाबदेह भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि जनजातीय समुदायों तक विकास की हर सुविधा प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके।
1: अभी आप राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और जनजातीय विकास योजनाओं की प्रगति पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, तत्पश्चात कार्यक्रमों का विवरण।

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी। सवेरे 8:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप असद अली खान का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन सुनेंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में जनसभा को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष, इस विषय पर के रामचंद्रन की वार्ता। दोपहर 1:10 पर आप सुन पाएंगे समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहले सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप लाइव फोन आउट कार्यक्रम सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स, और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। शाम 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए नसीम बानो चोपड़ा और अशोक खोसला को। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कुछ फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के अंतर्गत युववाणी कार्यक्रम होगा। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भधान हर किसान की नई उड़ान का सजीव प्रसारण, जिसके अंतर्गत विषय होगा एक्सट्रेस का पता लगाना और इंसिमिनेशन का समय, हीट के संकेतों को पहचानने के तरीके। अतिथि होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार। शाम 6:30 पर सुनिए पॉप मसाला कार्यक्रम। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा जसवंत सिंह को। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पर चर्चा, तत्पश्चात गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत, रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। अब अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलंगानाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तर नवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूत संरचनानाम् औद्योगिक परियोजनानाम् उद्घाटनम् शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानाम् प्रयासानाम् कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानीन्तन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्षश्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मन्त्रिमण्डलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोह खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालय।

0: कार्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति। यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

इसके अंतर्गत पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 81% तथा न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:35। ये थी मौसम की जानकारी।

सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्म देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी।

गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में जनसभा को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। सोमनाथ में आज आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के साथ श्री विजयपुरम के मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। निकोबार पुलिस द्वारा बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का शुभारंभ और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन दैनिक हार्बर फेरी टिकट बुकिंग शुरू करने की घोषणा की गई है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे तथा बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के एक रोड शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। उधर कला एवं संस्कृति विभाग आज सोमनाथ में आयोजित भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में किया जाएगा। इस दौरान फ्लैग पॉइंट के निकट अय्यनार मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाओं एवं विभिन्न सामुदायिक समूहों की भागीदारी रहेगी। यह यात्रा शिव मंदिर में संपन्न होगी। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सोमनाथ में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से हाल ही में अंडमान क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में टैगोर के साहित्यिक और कलात्मक योगदान को सम्मानित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विभाग की निदेशक प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रविन्द्र जयंती नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, लेखक और दार्शनिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, जिनके कार्यों ने बंगाली साहित्य, संगीत और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में टैगोर के योगदान और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने युवा पीढ़ी से टैगोर के कार्यों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगलीपुर की पीजीटी कल्याणी हल्दर ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए टैगोर को समर्पित एक कविता पाठ भी किया। कला एवं संस्कृति विभाग की सहायक निदेशक कनक राधा चटर्जी ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों का स्वागत किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों की सहायता के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कोचिंग फीस देने में असमर्थ है। इस योजना में निम्न आय वर्ग के छात्रों, अनाथालय में रहने वाले बच्चों, एकल अभिभावक परिवारों तथा अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण भी शुरू करने की योजना है। इच्छुक छात्र आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जून तक फोरशोर रोड हैडो स्थित गैर सरकारी संगठन उन्नति के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक फोन संख्या 9434283062 पर संपर्क किया जा सकता है। निकोबार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य छुट्टियों के दौरान शैक्षिक और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए एक सुरक्षित, अनुशासित और मजबूत भविष्य का निर्माण करना है। इन शिविरों में बच्चों को रचनात्मकता और कला गतिविधियों, शैक्षिक और संवादात्मक सत्रों, खेलों और क्रीड़ाओं, सुरक्षा जागरूकता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले

अभ्यासों, अनुशासन और टीम भावना से जुड़ी गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और समग्र कौशल विकास का एक बेहतरीन मिश्रण प्रदान किया जाएगा। अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बच्चों का पंजीकरण कर इस पहल का समर्थन करें। यह पहल न केवल युवा मस्तिष्कों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समुदाय के भीतर पुलिस और जनता के बीच संबंधों को भी मजबूत करती है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से स्टार्स ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दैनिक हार्बर फेरी टिकट बुकिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। यह पहल यात्रियों की डिजिटल सुविधा को बढ़ाने, हार्बर क्षेत्र में फेरी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत यात्री फेरी मार्गों के लिए एक तरफा और वापसी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मासिक पास का ऑनलाइन नवीनीकरण भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए QR आधारित डिजिटल सत्यापन प्रणाली भी लागू की गई है। धनिकाड़ी बांध में जलस्तर 50 मीटर से नीचे जा चुका है, जिसके कारण अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद को आपूर्ति किए जाने वाले जल की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे निपटने के लिए परिषद ने रटलैंड द्वीप से जल संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था प्रारंभ की है। विभाग जल संकट के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तथा आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग कर जल का सही उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक बर्बादी से बचें। अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती में जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कार निकोबार में एक विशेष संवाद और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का नेतृत्व निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर ने किया। इस अवसर पर कार निकोबार पुलिस थाना के थाना अधिकारी टी हेमावती और पुलिस रेडियो व फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनजातीय समुदायों के इच्छुक उम्मीदवारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर ने उम्मीदवारों को आगामी भर्ती अभियान के बारे में जानकारी दी। शारीरिक फिटनेस के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने उम्मीदवारों को नियमित प्रशिक्षण शुरू करने और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन और प्रेरक सुझाव भी साझा किए। आकाशवाणी श्रीविजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। सोमनाथ में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण और प्रशासन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के समाचार को आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा मदर्स डे के अवसर पर अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा मॉम एंड मी टीम शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने के समाचार को भी प्रकाशित किया है। निकोबार पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती में आदिवासी आवेदकों के बीच जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र का आयोजन करने के समाचार को इन्फो इंडिया ने प्रमुखता से छापा है। टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने अंदर के पन्ने में प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ में आज आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के साथ श्रीविजयपुरम के मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। निकोबार पुलिस द्वारा बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का शुभारंभ और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन दैनिक हार्बर फेरी टिकट बुकिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस देश की मिट्टी के कण कण में प्यार बसा हो, जहां हर दिल में संस्कार बसा हो, जहां वतन पर मर मिटना वीरों की पहचान हो, ये वो गुलिस्ता है जिस पर हम सबको नाज है।

दोस्तों, वतन की मिट्टी से बढ़कर जीवन में कोई सौगात नहीं होती। ये वो मोहब्बत है जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती।

गंगा की धारा बहती जहाँ हिमालय का ताज है, जहाँ मिट्टी की खुशबू बसी, जहाँ अपनों का प्यार है, यही हमारे देश की पहचान है।

अभी आप देश रागिनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7:30 मिनट।

0: में है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी।

0: नमस्कार श्रोताओं, विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेडियो आवाजों का अनोखा जहां है, जो पिछले 90 वर्षों से हम सबके दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। रेडियो में वो जादू है जो खामोशियों में भी आवाज दे जाए, कभी हंसाए तो कभी सोच में डाले, हर पल रेडियो हमें कुछ नया सिखाए। दोस्तों, हमारे ऐसे कई श्रोता भी हैं जो बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं। ऐसे ही एक श्रोता है पुलिस विभाग में कार्यरत श्री विवेक, जिन्हें आज भी रेडियो के कार्यक्रम बेहद आकर्षित करते।
1: नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। मैं सादीपुर में रहता हूं और पुलिस विभाग में कार्यरत हूं। रेडियो सुनना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मैं बचपन से लगातार रेडियो सुनता आ रहा हूं। रेडियो के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और हाल ही में शुरू किए गए नए कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे खासतौर पर गीत संगीत से जुड़े कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। पहले भी मैं इस कार्यक्रम में कॉल करके अपनी मनपसंद गाने सुनवाता था और आज भी हर रविवार को कॉल करके अपने मनपसंद गीत सुनता हूँ। इसके अलावा मैं प्रादेशिक समाचार भी नियमित रूप से सुनते आ रहा हूँ। आपको रेडियो केवल मनोरंजन ही नहीं कराता बल्कि लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देता है। स्वास्थ्य से जुड़े हेलो डॉक्टर जैसे कार्यक्रम भी मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। रेडियो से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है और मैं हमेशा इससे सुनता आ रहा हूँ। धन्यवाद।

0: दोस्तों, रेडियो पुरानी यादों का साथी है। जब रात के सन्नाटे में दिल तन्हा हो जाए तो रेडियो के अल्फाज ही हमारे दोस्त बन जाते हैं। गृहिणी कृष्ण वेणी कहती है, रेडियो उनका सच्चा साथी है और आज भी वे रेडियो के कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ सुनती हैं।
1: रेडियो से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है। बचपन से ही मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम बड़े मन से सुनते आ रही हूँ। उस समय बाल जगत मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हुआ करता था और आज भी मैं उसे उतने ही उत्साह से सुनती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा आज का विचार कार्यक्रम से होता है। इसके अलावा खेल जगत, विज्ञान की बातें और मनोरंजन से भरपूर गीत संगीत के कार्यक्रम भी मुझे बहुत पसंद है। खासकर हेलो फरमाइश तो बचपन से ही मेरा सबसे प्रिय कार्यक्रम रहा है। आज भी मैं बड़े शौक से इसे सुनती हूँ। प्रादेशिक समाचार भी मैं नियमित रूप से सुबह और शाम सुनती हूँ। सच कहूँ तो आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाल ही में आप लोगों ने कुछ नए और बदले हुए कार्यक्रम शुरू किए हैं, वे भी काफी रोचक और पसंदीदा बन गए हैं। व्हाट्सएप माई चॉइस कार्यक्रम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसमें अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भेजती रहती हूँ। कुल मिलाकर आकाशवाणी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। आज मुझे रेडियो से जुड़ने और आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आकाशवाणी परिवार के सदस्यों का दिल से धन्यवाद करती हूँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी में।
3: दोस्तों, रेडियो एक छोटा सा डिब्बा है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, जो भीड़ में भी हमें अपना सा लगे। धीमे धीमे सुरों में कोई बात कहे, न चेहरा दिखे न कोई पहचान, फिर भी इसकी आवाज दिल को छू जाए। शादीपुर के हमारे एक श्रोता श्री भवानी कहते हैं, रेडियो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इससे हमें कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती है।
4: नमस्कार, मेरा नाम भवानी है और मैं शादीपुर में रहता हूँ। मुझे बचपन से ही रेडियो सुनने का बहुत शौक रहा है। रेडियो के कार्यक्रम सुनने मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम

0: रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी में।
1: दोस्तों, रेडियो एक छोटा सा डिब्बा है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, जो भीड़ में भी हमें अपना सा लगे। धीमे धीमे सुरों में कोई बात कहे, न चेहरा दिखे न कोई पहचान, फिर भी इसकी आवाज दिल को छू जाए। शादीपुर के हमारे एक श्रोता श्री भवानी कहते हैं, रेडियो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इससे हमें कई उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती है।
2: नमस्कार, मेरा नाम भवानी है और मैं शादीपुर में रहता हूँ। मुझे बचपन से ही रेडियो सुनने का बहुत शौक रहा है। रेडियो के कार्यक्रम सुनने मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है। हाल ही में मैं आप लोगों द्वारा शुरू किए गए नए नए कार्यक्रम भी बहुत अच्छे और जानकारीपूर्ण लगते हैं। कभी कभी व्यस्तता के कारण कुछ कार्यक्रम छूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मैं जरूर रेडियो ऑन करता हूं और कार्यक्रम सुनता हूं। विशेष रूप से फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार, हेलो फरमाइश, हेलो डॉक्टर तथा शास्त्र और विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। इन कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ साथ नई और उपयोगी जानकारी भी मिलती है। आज मुझे आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद।

दोस्तों, रेडियो रागिनी का सफ़र आज बस यहीं तक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम रेडियो रागनी 90 वर्षों की कहानी, और इसी के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है।

0: एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
0: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और

0: भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112-3104-81 और 0112-3717106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और

और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियाँ समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044055 पर, जो

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें

0: ना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। और उनको जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा। और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला किया।

0: दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी

0: एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
1: यस सर।
2: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
0: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
2: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
0: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
0: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
2: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया।

0: और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, ज्यों-ज्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की

1221वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके मनोरंजन के लिए आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना ब्लफ मास्टर फिल्म से। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। अब सुनिए दूरिया फिल्म में भूपेंद्र और अनुराधा का गाया ये गीत। सुदर्शन फकीर के लिखे शब्दों को संगीत में ढाला है जयदेव ने।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में कुछ और गाने आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: तराने सुहाने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी का गाया बदतमीज़ फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे हसरत जयपुरी तथा संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार अनजान कलिखा मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

अभियां किशोर कुमार का गाया कभी कभी फिल्म का गीत सुन रहे थे। साहिर के लिखे गीत को संगीत दिया था खय्याम ने, और इसी गीत के साथ ही आज का तराने सुहाने कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 में है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं असद अली खान का सरोद वादन। इनके साथ पखावज पर प्रेम वल्लभ ने संगति की है। तो आइए सुनते हैं असद अली खान का सरोद पर बजाया राग पूरिया धनश्री।

अभी आप असद अली खां का सरोद पर बजाया राग पुरिया धनश्री सुन रहे थे। इनके साथ पकावज पर प्रेम वल्लभ ने संगति की थी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत आज प्रसारित किया गया असद अली खां का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आज दिन के 11 बजे आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में जनसभा को संबोधन का सीधा प्रसारण। समय याद रखिएगा, आज दिन के 11 बजे। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। आज हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में जनसभा को संबोधन का सीधा प्रसारण। समय रहेगा दिन के 11:10। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाथा चल। कार्यक्रम का पहला गीत कम दिसंबर इस फिल्म से।

वर्धन की आवाज़ में अभी आपने कम दिसंबर फिल्म का ये गीत सुना, और अब अगली फिल्म गुमशुदा, आवाज़ सोनू निगम की।

गुमशुदा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज थी। और अब अगला गीत क्रॉक फिल्म से, गायक निखिल डिसूजा। कुमार का गीत है प्रीतम का संगीत।

तेरा क्या होगा जॉनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक थे पंकज अवस्थी और इस गाने को लिखा नीलेश मिश्रा ने।

यस बॉस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम का अगला गीत है राज फिल्म से। गायक हैं अलका याग्निक और अभिजीत। समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत है।

फिल्म मिशन कश्मीर शंकर महादेवन, जिसपेंद्र नरूला और सुनिधि चौहान की आवाजी, राहत इंदौरी के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

दिल है तुम्हारा फिल्म का ये शीर्षक गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने और इस गाने की धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से बोल आनंद बख्शी के हैं, जतिन ललित का संगीत है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। देशगान इस कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं चंद देशभक्ति रचनाएं।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:10 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में जनसभा को संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी

0: स्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशम् दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशम् त्र्यंबकम् गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घृष्मेशम् च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
2: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
0: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
2: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार

0: ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पत्ति हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है। अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं।

0: डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहां पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहां पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः।

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्त

विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः।

0: विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे

0: नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
1: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
0: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंड से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त

0: का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव है। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
1: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्युरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं

0: तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को इंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी प्वाइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह है अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
1: लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है,

0: तो ये हाथ किसका अंग है जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि
1: जी
0: शिवलिंग है।
1: जी
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो जब होगा तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कूर्म क्रक्कल देवदत्त धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई। और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सौर लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से नेत्रों से अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपने एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल, अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा का विधान नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी कहूंगी कई बार अलग अलग क्षेत्रों में से मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर हैं, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर

0: चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो
1: जी
0: स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहां एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई,
1: जी
0: ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये
1: जी
0: विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये
1: जी
0: किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए,
1: जी
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहां जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहां अर्घ देने का मूल महत्व है। और
1: जी
0: इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े हैं वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, तो जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहां पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोभवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in

0: And the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honourable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honourable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honourable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम की उपस्थिति

0: इसे आयोजन और भी भव्य और अब स्वागत उद्बोधन यहां पर
1: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहेब मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार श्री पीके लहरी श्री हर्षवर्धन नोहटिया श्री विशद भाई मफतलाल आमंत्रित सर्वे महानुभाव प्रेस मीडिया मित्रों सौ ने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू। समग्र देश अने दुनिया की नजर जे राज्य की चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडिचेरी में पण विकास की राजनीति ने मड़ेला प्रचंड जन समर्थन शिल्पी यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवु छू। भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियों थी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवन प्रतीक छे। आपणी आस्था ना अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी वधु तेजस्वता साथे उभू थयु छे। आजे आ दिव्य मंदिर विध्वंसमांथी पुनर्निर्माणना सरदार साहेबना अड़ग निर्धार दृढ़ संकल्प अने राष्ट्रना आत्मसन्मान नु प्रतीक छे। तेमनो आ संकल्प 1951 नी 11 मे पूर्ण थयो ते गौरवशाळी विरासत ने आजे 75 वर्ष थया छे। आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदीए 2001 मां मुख्यमंत्री तरीके नु सेवा दायित्व संभाळ्युं। एज वर्षे तेमणे सोमनाथ मंदिर ना पुनर्निर्माण नो सुवर्ण जयंती उत्सव उजवीने आपणने तक आपी हती अने आजे सरदार साहेब नो दृढ़ संकल्प साकार थयानो आ अमृत उत्सव आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेब नी प्रेरणा थी देश नी आजादी ना अमृत काल मां ज आव्यो छे ते सोनामां सुगंध समो प्रसंग छे। आखा युग नु निर्माण करनार विजनरी लोकनायक श्री मोदी साहेबे प्रत्येक भारतवासियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अने सनातन हिंदू संस्कृति पुनर्जागरण नो भाव प्रकट प्रबल बनाव्यो छे। आदरणीय श्री मोदी साहेब अयोध्या में राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रसंगे देश नु विजन आप्यु हतु। सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पहला थयेला आक्रमण सामे शौर्य दाखवनार स्वाभिमानी योद्धाओं ने याद करतु सोमनाथ स्वाभिमान पर्व काशी विश्वनाथ कोरिडोर केदारनाथ धाम विकास पावागढ़ में 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण अने अंबाजी कोरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्यु छे अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरात में आव्या छे त्यारे फरीथी अमनु स्वागत करीने वीरमु छू। भारत माता की जय वंदे मातरम जय जय गरवी गुजरात।
2: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India. And the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp. And also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
0: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय

0: प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: उभरी। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन। इट इज अ 75 रुपी डिनोमिनेशन कॉइन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। द टू साइड्स कैन बी सीन ऑन दिस वेरी स्पेशल मेमेंटो दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डिस्प्लेइंग एंड दिस इज टू मार्क द ओकेजन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्सेक्रेशन ऑफ द रीबिल्ट Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75 with the lion capital of the Sarnath and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
0: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग।
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम।

आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा

रहा हूं। सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था,

चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में

चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील,

पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है।

साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं। एक दूसरे

0: प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: वी Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर

0: आशुतोष शर्मा के साथ और एसवाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से ये अति विशेष प्रसारण सुन रहे थे और अब लीजिए सुनिए समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम।
3: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
4: जी हाँ।
3: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
4: माती रे।
3: ए माती रे मोरो मोते,
4: मोरो मोते।
3: माती के,
4: माती के।
3: सुमीलो,
4: सुमीलो।
3: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
4: सोबी।
3: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,
4: हाँ,
3: ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार। लिखो दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर टोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ख, खागोर टोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर टोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
4: लागे लागे।
3: इसके आ गया है आहा आहा,
4: आहा, आहा।
3: फिर मातीर बुकुत,
4: मातीर बुकुत,
3: हाँ मातीर बुकुत। मोनोर मालोती,
4: मालोती
3: बूटोलो,
4: बूटोलो।
3: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर
4: कोरोनी
3: रे,
4: कोरोनी

0: juror, juror, papurire,
1: papurire,
0: papurire, azi,
1: azi,
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे, हुकुमार,
1: हुकुमार,
0: थापो,
1: थापो,
0: नाहुजुवा हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी
0: हुंदौर
1: हुंदौर
0: खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: खुदीनौर नहीं खनी ख खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

0: श्रोताओं, ये प्रोग्राम है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए फरमाइशों को हम शामिल करते हैं। यदि आप भी अपनी फरमाइशी गीत इस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं तो हमें अपने फरमाइशी इस नंबर पर भेजें। नंबर है 9474234000। नंबर एक बार पुनः बता दूं, 9947423400। श्रोताओं, हमें मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का एसएमएस आया है, जिन्होंने हमें फरमाइश की है अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोई भी गीत सुनवाने की। तो हम इनकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं पुकार फिल्म का गीत, जिसे संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने और इस गाने को लिखा गुलशन बावरा ने। तो इन श्रोता की पसंद पर सुनवा रहे हैं पुकार फिल्म का ये गीत।
1: तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस,

और अब अगला गीत मल्हार फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। इस गीत की फरमाइश हमें आई है जिला नांदेल इताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, जय शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। और हमारी इन श्रोता के पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। सुनेगा, इंदिवर की रचना है, रोशन का संगीत है।

पलेरा टेक मगड़ मध्य प्रदेश से बने बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सुनाली विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा कोई भी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम कोई भी गीत इनके लिए प्ले कर दें, तो हमारी तरफ से इनको हम सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल की लिखी रचना और ए आर रहमान का संगीत है। रांझना मूवी का ये गीत है। आवाजें नीति मोहन और राशिद अली की।

अगला गीत आराधना फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की। इस गाने की फरमाइश हमें आई है पद्मा टॉकीज नेपान नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। इस गाने को लिखा आनंद बख्शी ने, एस डी बर्मन का संगीत है।

सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान सुनना चाहते हैं पहचान फिल्म का गीत, जिसे लिखा नीरज ने और इसकी तर्ज तैयार की शंकर जयकिशन ने, आवाज़ मुकेश की।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Minister for Border Fencing also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास न मिटा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के दुनिया को केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा

0: उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी

0: न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
3: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा

0: पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। चलते चलते आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल।

अरब श्रोताओं, हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम के 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम के 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा ये प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, जहां दोस्तों से बातें होंगी और संगीत की खुशबू होगी। तो तैयार हो जाइए कुछ शानदार गीतों और रोचक बातों को सुनने के लिए। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: जी, यामिनी जी, यामिनी जी बात कर रही है। जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, मैं यामिनी बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: और क्या कर रही थी इस वक्त?
1: जी बस अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, तो सभी खाना वाना खा के कंप्लीट होके अभी बस किचन वाइंड अप टाइम, गृहिणी का टाइम।
0: चलिए, और इसी बीच हमारा कॉल भी आपको लग गया।
1: जी अच्छा लगा आपका कॉल आया।
0: जी चलिए, हम भी धन्य हैं, आपके कॉल हमें तुरंत ही लग गया। और बता दीजिए आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत है वो जो सुनेंगे आप?
1: जी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल एक विशेष दिन गया है,
0: मदर्स डे।
1: वैसे तो हर दिन मदर्स का होता है, बट आजकल हम एक स्पेशल डे हर चीज के लिए मनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उन्हीं को समर्पित एक गीत, तू कितनी भोली है तू कितनी प्यारी है, गाना मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी,
1: राजा और रंग से।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये राजा और रंग फिल्म से जरूर सुनवाएंगे। और मदर्स डे कल हमने मनाया, तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कुछ?
1: जी जी, मैं एक शिक्षिका हूँ और एक प्यारे से बेटे की

0: माँ हूँ, क्योंकि अभी 12 साल का है।
1: अच्छा, तो आपने कैसे
0: और
1: सेलिब्रेट किया ये इस दिन को?
0: जी, मैं मेरी सास के साथ और मेरे बेटे के साथ एक पिक्चर देखे आए, जो कि है दादी की शादी।
1: अच्छा
0: जो एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है,
1: जी,
0: कॉमेडी के साथ एक बहुत अच्छा
1: हाँ
0: मैसेज
1: हाँ
0: दिया है, जो नीतू कपूर जी ने उसमें बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाया है। और एक बहुत अच्छा मैसेज है कि कैसे हमें अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, बट उतना ही समय हमारे माँ बाप को हमें देना जरूरी है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कितने कष्टों से उन्होंने हमें पाला है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और यामिनी जी, आपकी क्या यादें रहीं अपनी माँ के साथ? कुछ ऐसे यादें जो हमसे शेयर करना चाहेंगे आप, जो बहुत
0: जी
1: ही
0: बिल्कुल, हमारी
1: खास रहा होगा अब तक आपको याद है?
0: जी, मैं एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ
1: जी
0: और सभी के प्यार और दुलार के बीच पली बड़ी हूँ। तो माता जी का प्यार और उनका सहयोग हमेशा रहा है।
1: जी
0: उनके बीच बीच में चीजों को समझाना और हमेशा खड़े रहना हमारे लिए,
1: जी
0: सही संस्कार देना, सभी
1: जी
0: का संपूर्ण परिवार का ध्यान रखते हुए एक अच्छी परवरिश देना, तो
1: जी
0: उसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ।
1: चलिए,
0: एक बहुत
1: बहुत
0: बड़ी उपलब्धि
1: जी
0: है एक अच्छी माँ का होना हमारे जीवन में।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी जी जिसकी झलक हमें दिखाई दे रही बातों से ही लग रहा है कि संयुक्त तो परिवार में कितना अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर रहना। और जिस तरह से आपकी माँ ने आपको शिक्षा दिया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर करी यामिनी जी, धन्यवाद
0: जी,
1: इसके
0: धन्यवाद
1: लिए। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये
0: धन्यवाद।
1: गीत।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू हमसे बात करने के लिए।

0: Hello, dear friends.
1: Hello, dear ma'am. Good afternoon.
0: Good afternoon. आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे.
1: जी, मेरा नाम निशा है.
0: जी जी.
1: शिवाजी कॉलोनी कारा शर्मा से बात कर रही हूँ.
0: जी जी. कैसी हैं आप?
1: जी ठीक हूँ मैम. आप सब कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं. और सबसे पहले तो गाना बता दीजिए ताकि हम उसे रेडी कर लें.
1: जी हाँ मैम, फिल्म खामोशी है 1969 का. गायिका जो है लता जी हैं और गीत के बोल हैं हमने देखी है उन आँखों की बहकती खुशबू.
0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत है. वैसे आपके लंच हो गया?
1: जी मैम, मेरा लंच हो गया है.
0: जी जी. आज
1: कभी कभी लेट भी करते हैं, आज थोड़ा जल्दी कर दिए. बारिश थोड़ा हुई थी तो भूख लग गया
0: थोड़ी गर्मी कम हुई.
1: जी हाँ, कम हुई. वैसे अंडमान का यही खासियत है मैम, बारिश जरूर होता है किसी भी मौसम में, थोड़ा बहुत तो बारिश.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अब क्योंकि आपने गाना बता दिया खामोशी फिल्म का, तो हम सुने ये मिलके ये गीत.
1: जी मैम, ज्यादा समय भी लेना चाहती मैं क्योंकि सभी को अपना गीत बोलना है, आपको भी उनसे बात करना है, सबको चांस देना है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: आप सबको बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना.
0: चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत.

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो डियर फ्रेंड्स
0: जी, ये हमारी अविनाश जी से बात हो रही है?
1: जी,
0: महाराष्ट्र से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ जालना
0: जी। कैसे हैं आप
1: जी? बहुत अच्छे
0: जी। जी कुछ काम काज कर रहे थे इस वक्त?
1: नहीं कुछ नहीं, आराम फरमा रहे थे।
0: चलिए तो आराम करते करते कौन सा गीत है जो सुनना चाहेंगे?
1: याद सुनेंगे बेटा मूवी का।
0: बेटा मूवी का?
1: हाँ
0: जी।
1: ये 2 दिन हवाओं के चौके अनुराधापुरम।
0: जी जी ये है आपका अनुराधा पौडवाल जी और बाबला जी, इनकी आवाज में जो ये दो दिल है चंचल, ये गीत आपको सुनना है?
1: जी।
0: चलिए जरूर सुनवाएंगे। सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं, हेलो डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम में हम ले रहे हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ला मिन्ये रोक रहे मांग इंगेरिये ताका लमक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर ही 684 किलोहर्ट्ज रमांगेलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिन गातलोन इंगेला हराप तरन मिने महावट करेचोंग नलक एलहोय मिने कुन पनाम ही।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं नसीम बानो चोपड़ा और अशोक खोसला। श्रोताओं, आइए सुनते हैं नसीम बानो चोपड़ा के गाए कुछ गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में नसीम बानो चोपड़ा और अशोक खोसला को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रमों का विवरण।

पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:45 पर कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम शाम 5:00, 5:30 पर आप बंगला कार्यक्रम सुन पाएंगे। संध्या 6:00 कृषि जगत में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भधान हर किसान की नई उड़ान। विषय रहेगा एस्ट्रस का पता लगाना और इंसिमिनेशन का समय हिट के संकेतों को पहचानने के तरीके। विशेषज्ञ होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार। पोप मसाला कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। 7:15 पर सुनिए मौसम जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सुगम संगीत में 7:20 पर फनकार होंगे जसवंत सिंह। 7:30 पर युवानी के तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरवगान आप सुन पाएंगे। रात्रि 10:00 कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि 9:30 पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्रीटिव्स में जानकारी का विषय रहेगा सुबाबुल की खेती। इंद्रधनुष कार्यक्रम में 6:15 पर शीर्षक होगा वादिया। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस गान की 236वीं कड़ी। 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम होगा खेल जगत। सुगम संगीत का समय रहेगा 8:30, जिसके अंतर्गत आप अनुराधा पौड़वाल, चंदन दास और महेंद्र कपूर को सुन पाएंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा कल 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप कर्नाटक शैली में एस गोविंद राजन का गायन सुन पाएंगे। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 10:00। 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1282वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। चित्रगीत का समय रहेगा 11:30। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:00। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। 1:10 पर सुगम संगीत में आप चंदन दास और हरिहरन को सुन पाएंगे। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी, तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर कार्यक्रम होगा यू ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत में आप पंकज उदास, अनुराधा पौड़वाल और जसवंत सिंह को सुन पाएंगे। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम का समय रहेगा शाम 4:45। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बहारों के शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं माया मेमसाब फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है कुमार सानू ने, धुन तैयार किया है हृदयनाथ मंगेशकर और गीत को लिखा है गुलजार ने।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं प्यार का साया फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस बोल को संगीत से सजाया है नादिम श्रवण ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए लाइफ पार्टनर फिल्म का ये गीत। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा स्वर दिया है सो

प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए लाइफ पार्टनर फिल्म का ये गीत। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा स्वर दिया है सोहम चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: किसान भाइयों एवं बहनों, आज लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 5वीं कड़ी। लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय है एस्ट्रस का पता लगाना और इंसेमिनेशन का समय व हीट के संकेतों को पहचानने की तकनीकें। इस विषय से संबंधित जानकारी हमें देंगे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार। विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हमारे किसान भाई कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 03192-232-540। नंबर हम पुनः दोहराते हैं 03192-232-540। लीजिए सुनिए कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान की 5वीं कड़ी।

0: नमस्कार। कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान प्रायोजित कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। साथियों, पशुओं का हीट में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और पशुओं के एस्ट्रेस की सही पहचान और उचित समय में इंसेमिनेशन प्रजनन प्रबंधन का आधार है, जो गर्भाधारण की दर बढ़ाने, दूध उत्पादन सुधारने तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, जब पशु हीट में आते हैं तो उसकी जानकारी होना हीट की पहचान के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पशुओं में हीट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से लक्षण हैं तथा गर्भाधारण के समय में पशुओं की उचित देखभाल कैसे करनी चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पशुपालकों को जाननी बेहद ज़रूरी है। और साथियों, इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार जी। डॉक्टर रमेश कुमार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम। किसान भाइयों नमस्कार।
0: डॉक्टर रमेश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आम भाषा में हीट या एस्ट्रेस क्या है?
1: हीट या एस्ट्रेस एक अवस्था होती है जब पशु, मतलब मादा पशु, जब एक प्यूबर्टी एज, एक पर्टिकुलर एज आ जाती है, तो उसमें एक अवस्था आती है जिसमें वो ब्रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस अवस्था में वो कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें सिम्टम्स आते हैं और जब वो ब्रीडिंग होती है तो वो गर्भाधान करता है पशु।
0: तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये पशु अभी हीट में है?
1: देखिए, हीट में हम पहचानते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण हमको दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं,
0: साइलेंट होते हैं,
1: जैसे पशु का रंभाना, पशु का खाने में मन नहीं लगना, दूध का कम होना, ये कुछ द्वितीय लक्षण होते हैं। और प्राथमिक लक्षणों में जैसे पशु एक मतलब कोशिश करता है कि दूसरे पशु पे चढ़ने का, या फिर खड़ा रहता है, दूसरे पशु उसके ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे को लिक करना, तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। और इसमें दूध भी थोड़ा सा उत्पादन में थोड़ा कम हो जाता है, बार बार पेशाब करना, ये सभी एस्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं
0: जी। तो पशुपालक इसे देख के पहचान जाते हैं कि उनका पशु जो है वो हीट में है या गर्म हो गया है।
1: हाँ जी मैम। तो किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जो एस्ट्रेस है ना, इसमें से कोई भी सिम्टम्स आता है तो हमको और नज़दीकता से उनको देखना है। जैसे एक वो बोलते हैं म्यूकस सिक्रेशन होता है, वेजाइनल म्यूकस सिक्रेशन, वो भी एक सिम्टम्स होता है। और ऐसा लगता है तो आपको तुरंत स्टेप लेनी चाहिए, क्योंकि एक जैसे कि जो एक प्रॉपर ब्रीडिंग मैनेजमेंट होता है डेयरी फार्म के, जो सफलता होती है वो उसमें एक ये बड़ा कदम है, मतलब एस्ट्रेस को पहचानना, गाय या भैंसों में जब गर्मी आती है उसको पहचानना। क्योंकि अगर सही टाइम पे हम इसको पहचानेंगे तो हमको पता रहेगा कि हमको कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI बोलते हैं, वो कब करना है। सही समय पे AI ही हमको।
0: डॉक्टर साहब, हम बात आगे करेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, लगता है कि कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम बात कर रहे थे कि हीट को पहचान के और उसके लक्षणों को देख के हमें पता लगा लेना चाहिए कि हमारा पशु अगर हीट में है, तो उस संदर्भ में हम बात कर रहे थे। जी हाँ
1: हाँ जी, तो इन लक्षणों के

0: आधार पर हम एक सही समय पे हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, और ये कोशिश रहती है कि उसमें कंसेप्शन रेट, सही समय पे कृत्रिम गर्भाधान करने से कंसेप्शन रेट होती है जो गर्भ धारण की जो होती है वो
1: जी
0: अच्छी होती है।
1: जी
0: अगर हमको पता ही नहीं है गाय कब गर्म हो रही, कब हीट आना शुरू हुआ, तो इसको लेकर एक ये रहता है कि आपने मतलब एआई टेक्नीशियन को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, और तो फिर वो आकर चेक करते हैं, वो देखते हैं कि हीट तो पास हो गई है, प्रॉपर हीट में नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कॉलर वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उन्हें ले लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
2: हेलो
1: हेलो, आप कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो
1: हेलो
0: हाँ
1: हेलो
0: जी बताइए।
1: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नाम
1: बोलिए।
0: बताइए अपना।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो। लगता है कॉलर के साथ हमारा संपर्क वापस टूट गया है। डॉक्टर साहब,
0: तो इस प्रकार हीट की पहचान कृत्रिम गर्भाधान
1: जी
0: या गर्भ धारण में काफ़ी मदद करती है, जिससे हम प्रॉपर टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर कर एक सही
1: जी
0: समय पे जैसे काफ को जन्म देना, प्रॉपर प्रोडक्शन होना, और एक इकोनॉमिक डेयरी फार्म के लिए ये काफ़ी बेहद ज़रूरी है मैम।
1: जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि गाय में कितने दिनों तक गर्म रहती है और प्रजनन का सही समय कौन सा होता है?
0: ये हीट एक हीट साइकिल होती है जो
1: जी
0: कि 18 से 24 दिन के अंदर,
1: जी
0: ऑन
1: हाँ
0: एवरेज 21 दिन की साइकिल होती है,
1: जी
0: बट इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसको हम एक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, एस्ट्रस,
1: जी
0: गर्मी में आना, वो सिर्फ 18 से 24 घंटे के लिए ही होती है।
1: जी
0: हम उसकी प्रॉपर पहचान जरूरी है। हीट में आने से
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से, और
1: जी
2: मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि कोई जो पशु है बच्चा नहीं दे पाता है, तो उन पशु के ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? धन्यवाद।
0: हाँ जी किसान भाई, देखो ऐसा है ना, पशु बच्चा नहीं दे पा रहा है ना, मतलब हीट में नहीं आ पा रहा, आपका क्वेश्चन ऐसा ही है।
2: हेलो
1: जी रमेश जी, आपका क्वेश्चन यही है कि आपका पशु हीट में नहीं आ
0: हीट
1: पा रहा
0: हीट
1: है।
0: हाँ हीट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ये एक
2: हेलो
0: ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वो उसका प्रॉपर एज और बॉडी वेट प्रॉपर आ गया है कि नहीं आ गया, अगर ऐसा आ गया है तो उसको प्रॉपर मिनरल डिफिशेंसी की वजह से हो सकता है, तो हम वो मिनरल सप्लीमेंट करेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस देंगे, बैलेंस डाइट, और फॉस्फोर्स, कभी कभी कुछ फॉस्फोर्स की कमी से भी होता है, तो हम स्पेसिफिक फॉस्फोर्स जैसे अपना खाने का सोडा मिनरल मिक्सर के साथ में देने से वो थोड़ा सा प्रमोट करता है।
1: जी
0: अगर इस दौरान भी मतलब ये फेल होता है तो आगे हम एक एक्सपर्ट जो वेटरनरी ऑफिसर होता है
1: जी
0: उससे, मतलब उसके जो एक्सपर्ट है उसमें चेक करने में उसका ये जो अंदरूनी जो सिस्टम होता है,
1: जी
0: मतलब गर्भाशय वगैरह है, ओवरी वगैरह है, वो कैसा है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एनाटोमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है,
1: जी
0: या कुछ ओवरी में कुछ ऐसा कुछ सिस्ट वगैरह तो नहीं बन गया
1: जी
0: है
1: मतलब
0: ना,
1: आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो
0: तो
1: विटामिन्स का भी इसमें पीछे
0: हाँ
1: बहुत बड़ा रोल
0: विटामिन
1: है,
0: मिनरल
1: उस
0: मिक्सचर
1: हाँ उनके
0: हाँ
1: उनकी कमी के कारण जो है वो ऐसा संभव हो
0: हो
1: सकता है।
0: सकता है।
1: जी
0: हाँ अल्टीमेट ट्रीटमेंट हम एनाटोमिकल है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर डिफिशेंसी है तो हम उसको
1: जी
0: सप्लीमेंट प्लस कुछ हार्मोन्स, जिसको मतलब जैसे एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता
1: जी
0: है, मतलब उसका ट्रीटमेंट करेंगे है ना, तो वो पशु हीट में आ सकता है मतलब, तो
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो मतलब
0: उसको
1: इस
0: हाँ
1: इलाज के बाद आप
0: हाँ
1: पशु जो है वो हीट में आ
0: हीट
1: सकते हैं,
0: में
1: वो
0: आ
1: ठीक हो
0: सकता है,
1: सकते
0: वो
1: हैं।
0: ठीक हो सकता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ जी किसान
0: हेलो
1: भाई, आवाज़ आ रही है?
0: हेलो हेलो। कॉलर के साथ हमारा नहीं लिंक हो पा रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक बार हीट में आने के बाद गाय जो है वो दूसरी बार कब तक हीट में आ सकती है।
1: ये हीट में आना एक नेचुरल प्रोसेस है।
0: जी
1: अगर गाय हीट में आने के बाद, जैसे हमने ब्रीडिंग करवाया, उसको एआई किया, या
0: जी
1: फिर प्राकृतिक तरीके से किसी नर नर पशु के साथ उसको रहने दिया,
0: जी
1: अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है,
0: जी
1: गर्भधारण हो जाता है,
0: जी
1: तो गाय हीट में नहीं आता है, वो गर्भ ठहर जाता है, तो हम उसको मानते हैं, है
0: अच्छा
1: ना।
0: अच्छा
1: अदरवाइज एवरी 21 डेज, है
0: जी
1: ना, एवरी 21 डेज ऑन एन एवरेज गाय गर्म होती है।
0: ठीक।
1: हाँ जी,
0: डॉक्टर रमेश, हमने सुना है एएम और पीएम नियम, ये क्या है
1: मैम,
0: और
1: ए
0: इनका
1: एम,
0: क्या महत्व है।
1: हाँ जी, ए एम पी एम नियम ये ए के लिए होता है। जैसे कोई पशु
0: जी
1: मॉर्निंग में अगर गर्म हुआ है,
0: जी
1: देखा गया है, तो उसका जो कृत्रिम गर्भधारण या एआई हम इवनिंग में करते हैं, और इवनिंग में हमने नोटिस किया है
0: जी
1: अप्रोक्सीमेटली, तो उसका मॉर्निंग में हम एआई करेंगे
0: अच्छा,
1: अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, है ना।
0: के गैप से
1: हाँ,
0: किया
1: ट्वेल्व
0: जाता है।
1: आवर्स टू 18 आवर्स, ये जो ड्यूरेशन होता है, इसमें हम एआई करते
0: जी
1: हैं मोर कंसेप्शन के लिए।
0: जी
1: हाँ
0: डॉक्टर साहब, डेयरी फॉर्म की अगर हम बात करें तो डेयरी फॉर्म में हीट डिटेक्शन क्यों आवश्यक है पशुओं में।
1: देखिए मैम, डेयरी फॉर्म आदमी क्यों करता है? अपना मतलब इकोनॉमिक पर्पज से, कोई अर्निंग से करता है,
0: जी
1: जिसमें हीट डिटेक्शन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
0: जी
1: उसी के ऊपर टिका है आपका एआई कितना सक्सेस होगा। एआई
0: जी
1: सक्सेस होगा तो गाय मतलब गर्भधारण करेगी और एक सही टाइम पे बच्चा मिलेगा, ऐसा चलता रहा तो एक उचित समय पे उत्पादन मिलेगा, तो इसलिए हीट डिटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हीट डिटेक्शन को सही समय पहचानने के लिए, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग है, एक अच्छा मतलब गुड पर्सन
0: जी
1: जो उसमें उसको रिकॉर्ड कीपिंग कर सके, विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सके, तो ये काफ़ी ज़रूरी बिंदु है, मतलब कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब
0: डेयरी फॉर्म में रिकॉर्ड का जो
1: हाँ, वो
0: रखने का जो महत्व
1: रिकॉर्ड,
0: है वो
1: हाँ
0: आप बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर को ले लेते हैं।
1: जी।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप। हेलो डॉक्टर साहब, अब हम बात
1: हेलो,
0: करते हैं साइलेंट हीट के बारे में। साइलेंट हीट क्या है और इसके क्या कारण होते हैं।
1: साइलेंट हीट उसको बोलते हैं जब जो बिहेवियर जो साइन होते हैं, मतलब
0: जी
1: पशु जो हमको दिखते नहीं है,
0: लक्षण ना
1: पशु पशु
0: दिखना।
1: हाँ
0: जी
1: रेगुलर इंटरवल पे गर्म होता है, जैसे
0: जी
1: 21 डेज का साइकिल है तो वो गर्म होगा, बट बाहरी रूप से जैसे वो कोई दूसरे पशु के ऊपर नहीं चढ़ता है, चढ़ने नहीं देता है, या
0: जी
1: रंभाता नहीं है उतना,
0: मतलब उसके सिम्टम्स नहीं
1: हाँ
0: आते हैं
1: बाहरी
0: जो।
1: जो सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे,
0: जी
1: बट जैसे वुलवा से सिक्रेशन वगैरह का होना,
0: जी
1: है ना, और उसका खाना थोड़ा कम कर देगा, मिल्क उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये
0: जी
1: सिम्टम्स रहेंगे, बट जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं
0: जी
1: वो मतलब नहीं रहेंगे, है ना। और इस वजह से क्या होता है ना, जिस पशुपालक को पता नहीं है
0: जी
1: तो वो क्या है, मिस कर देता उस हीट को।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है, राज क्या है भाई?
3: राज नहीं, समझदारी
2: और काम
3: है।
2: साफ
3: मैंने
2: सफाई
3: एआई अपनाया।
2: ये आई, ये क्या है?
3: एआई यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
2: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा?
3: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
4: हाँ, एआई अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
0: पशु चिकित्सा

0: की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
0: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
4: ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे साइलेंट हीट के बारे में, कि जिसमें हमें लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पशु हीट में होता है।
5: जी
4: जी, तो इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये कैसे फिर पहचाने कि हमारा पशु हीट में है।
5: जी, इस साइलेंट हीट में पशु के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसका खाने में कम रुचि होना उस पर्टिकुलर डे पे, दूध उत्पादन में गिर जाना, या पशु जैसे जहाँ पे आप दूध निकालते हो वहाँ पे नहीं जाना
4: जी,
5: उसके पीछे से थोड़ा म्यूकस लसा निकलता है, उसकी पहचान करना, तो ये सिम्टम्स के साथ साथ मतलब इनको नोट करके रखना चाहिए
4: जी,
5: है ना। इनके आधार पे हम AI टेक्नीशियन या पशु जो पशु चिकित्सक है उनको आमंत्रित कर सकते हैं। वो आकर चेक करेंगे मतलब यूटेरस टोन वगैरह कैसा है उसका, वो रेडी है तो उस बेसिस पे वो AI कर सकते हैं, है ना। अगर बाय चांस आपने नहीं बताया, आपने नोटिस किया नहीं बताया, तो फिर से सिम्टम्स 21 डेज के बाद में फिर आएंगे, तब आपको वेरी केयरफुल रहना है। अभी मेरा पशु, वो पशु जो मिस हो गया था, अभी हिट में आने वाला है, आपको रेडी रहना है और क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है उस पशु को।
4: अच्छा अच्छा,
5: हाँ जी,
4: तो उससे पता चल जाएगा कि
5: उससे पता चल जाएगा। हाँ जी
4: ठीक। जब आपने बात की कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो इस संदर्भ में टीजर बुल क्या है और इससे हीट की पहचान में ये किस तरह से काम करता है? जब हम मतलब अपने पशुओं में AI कराते हैं तो उस वक्त इसका क्या महत्व है?
5: जी, जैसे कि साइलेंट हीट एक प्रॉब्लम है, मतलब उतना उसमें साइन प्रोमिनेंट नहीं होते हैं स्पेशली हम।
4: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर ले लेते हैं
5: जी।
4: हेलो हेलो हेलो हेलो जी, बोलिए कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए कौन बोल रहे हैं? हेलो, लगता है कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे टीजर बुल के बारे में।
5: जी, तो ये टीजर बुल क्या करता है ना, जैसे पशु साइलेंट हीट दिखाते हैं स्पेसिस, जैसे बफेलो है या ग्रुप ऑफ एनिमल, तो ये मतलब पशुपालक की मदद करता है। ये टीजर बुल उसको बोलते हैं जो कि ब्रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता है, मतलब वो गर्भाधान नहीं कर सकता, बट अपने स्निफिंग से या वो अट्रैक्ट करता है
4: जी,
5: फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है
4: जी, जी।
5: जब कोई पशु जैसे सपोज साइलेंट हीट है, नहीं आ रहा है सिम्टम, अगर ये बुल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसे माउंट कर रहा है, दैट मीन्स वो पशु हीट में है, तो ये हीट डिटेक्शन में मदद करता है।
4: मतलब इस तरह आप लोग समझ जाते हैं।
5: हाँ, बट ये ब्रीडिंग नहीं कर सकता, इसको इस हिसाब से मतलब तैयार किया गया है, ये ब्रीडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मतलब ये सीमेन डिपॉजिट नहीं कर सकता।
4: जी जी
5: जी।
4: अब हम ये जानना चाहेंगे कि गायों में हीट के लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि हीट को बाधित करते हैं उस तरह।
5: जी जी, तो हीट को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जैसे न्यूट्रिशन आता है
4: जी,
5: तो न्यूट्रिशन में एक बैलेंस रेशन, मिनरल मिक्सचर, ये प्रॉपर नहीं होने से पशु देर से हीट में आएगा और उसके

0: जो सिम्टम्स होते हैं वो भी प्रोमिनेंट नहीं रहे, मतलब उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो एक बैलेंस रेशन विद मिनरल मिक्सचर ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पशु को देना।
1: जी
0: इसके अलावा टेम्परेचर,
1: जी
0: इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर रहता है, जैसे सर्दी गर्मी, तो वो भी हीट को प्रभावित करती है।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं।
0: जी
1: हेलो हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
2: अब्दुल वहीद
1: जी पूछिए, डॉक्टर साहब से क्या पूछना है आपको?
2: जी। गर्मी ज्यादा हो गई ना, गाय गंजी पीता नहीं, खाता नहीं ठीक से।
0: अच्छा, आपका कहने का मतलब खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पशु को एक जो पीने का पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में रखें, ज़्यादा हीट में वो एक्सपोज नहीं हो, मतलब जैसे गर्मी रहती है ना बाहर में, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें। तो अपना शेड में जैसे आपने फैन वगैरह लगा कर रखते हो या जो भी कूलिंग सिस्टम वो लगा कर रखते हो, अगर वहाँ पे रहेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, हवा लगती रहेगी, थोड़ा कूलिंग रहेगा, तो वो खाना पीना करेगा और आपको उचित उत्पादन भी, मतलब ये दूध का प्रोडक्शन भी मिलेगा।
2: जी
0: हाँ जी
2: थैंक यू।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान जो है ये प्राकृतिक गर्भाधान से कैसे बेहतर है?
0: जी मैं कृत्रिम गर्भाधान ये आया क्यों, एक टाइम
1: जी
0: पे नेचुरली ही हुआ करता था,
1: जी
0: है
1: इसकी
0: ना,
1: जरूरत क्यों
0: जरूरत
1: पड़ी?
0: क्यों हुई?
1: जी
0: तो सबसे पहले तो ये कि इस विधि के माध्यम से हम एक ही बूल से कई एनिमल को हम मतलब कंसीव कर सकते हैं, मतलब
1: जी
0: प्रेग्नेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, 1 बूल 20 गाय, मतलब गायों के लिए रखते हैं नॉर्मली
1: जी
0: नेचुरल ब्रीडिंग में, यहाँ पे 1 बूल हम 500 इवन 1000 नंबर ऑफ
1: अच्छा
0: काउज को हम इंसेमिनेट कर कर ये
1: जी
0: एक टाइप का इकोनॉमिक, है ना,
1: जी
0: वो कर सकते हैं। ठीक है,
1: जी
0: इसमें जो विदेशी नस्ल या अच्छे नस्ल के जो ब्रीडिंग बुल्स होते हैं वो
1: जी
0: हर जगह नहीं पहुंच सकते,
1: जी
0: तो उनका जो सीमन है वो हम मतलब कहीं पे भी, जहाँ पे भी मतलब ये सर्विस अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहाँ पे उसका उपयोग करके नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो जैसे नस्ल सुधार होती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है उससे,
1: बिल्कुल।
0: है ना। ये
1: और
0: हमारी मदद करता है कि जैसे जो भी ये हम कर रहे हैं ये साइंटिफिकली कर रहे हैं और इसमें बीमारी के मतलब नए के बराबर चांसेस होते हैं। तो
1: अच्छा
0: हम इससे क्या है कि जैसे मेल से फीमेल में जो मेटिंग के दौरान जो बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं,
1: जी
0: बशर्ते हम हाइजीन मेंटेन करें।
1: जी
0: ठीक है, एक एक मेल एनिमल है बहुत अच्छा है, अगर हम उसका सीमन आज से 100 ईयर्स बाद में भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि
1: अच्छा
0: वो हम प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जो कि हम मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स प्रिजर्व
1: हाँ,
0: कर कर
1: इतने
0: रख
1: टाइम
0: सकते
1: के
0: हैं।
1: लिए रह सकता
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: वो।
0: हाँ हाँ उसकी डेथ के बाद भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर ये काफ़ी उपयोगी है कृत्रिम गर्भाधान। जी
1: जी और आजकल आप देखते हैं आपके पास किसान पशुपालक आते हैं तो वो इसमें रुचि ले रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान में?
0: जी हम डिपार्टमेंट काफ़ी मतलब उनको अवेयर करने का कोशिश कर रहा है टाइम टू टाइम, हम डोर टू डोर ये AI की सर्विस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं,
0: जी
1: उन्हें हम ले लेते हैं। जी हाँ हेलो हेलो हेलो हेलो, जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए, हेलो हेलो, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी पूछिए, हेलो डॉक्टर साहब, इनसे संपर्क नहीं हो सका है। और अब हम जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान जो है ये प्राकृतिक गर्भाधान से अच्छा है और किसान इसमें रुचि ले रहे हैं क्योंकि इससे

0: हमें एक अच्छी नस्ल मिलती है, अच्छी नस्ल मिलने से
1: जी
0: हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होता
1: जी
0: है ना। तो इससे फ़ायदे हैं और इन फ़ायदों को किसान समझ गए हैं और वो आपके पास जब आते हैं तो वो इस हम जानना चाहेंगे कि इसकी सक्सेस रेट कितनी है एआई की।
1: जी अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो इसकी सक्सेस अराउंड 40% है
0: जी
1: ना। और इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाए, मतलब
0: जी
1: है ना। तो उसके लिए काफ़ी सावधानी बरतते हैं, जैसे प्रॉपर टाइम पे हीट डिटेक्शन, एक गुड एआई टेक्नीशियन,
0: जी
1: प्रॉपर बैलेंस डाइट ऑफ एनिमल विद मिनरल सप्लीमेंट, इन सभी फैक्टर्स को अगर हम ध्यान से मतलब देखेंगे और किसान भाई भी जागरूक हो गए तो जरूर ये एआई सक्सेस रेट बढ़ेगी, मतलब स्लोली स्लोली।
0: बिल्कुल
1: यस, जो कि हमारे उत्पादन के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, विषय के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन हम समय सीमा से जुड़े हुए हैं। आप आज कार्यक्रम में आकर किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम।

0: अभी आप लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान हर किसान की नई उड़ान की पांचवी कड़ी सुन रहे थे। विषय था एस्ट्रस का पता लगाना और इंसेमिनेशन का समय व हीट के संकेतों को पहचानने की तकनीकें। विषय से संबंधित जानकारी आपको दे रहे थे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार।
1: अरे वाह, तुम्हारी गाय तो इस बार खूब दूध दे रही है। राज क्या है भाई?
2: राज नहीं, समझदारी है। मैंने AI अपनाया।
1: AI? ये क्या है?
2: AI यानी अच्छी नस्ल और समय पर गर्भाधान।
1: मतलब कम खर्च में ज्यादा फायदा।
2: बिल्कुल, दूध भी बढ़ा, हर साल बछड़ा भी, बीमारियां कम हुई और आमदनी डबल।
3: हाँ, AI अपनाओ, खुशहाली लाओ, अच्छी नस्ल से लाभ कमाओ।
4: पशु चिकित्सक की सलाह लें, समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराएं और पशुपालन को बनाएं मुनाफे का मजबूत साधन। कृत्रिम गर्भाधान, हर किसान की नई उड़ान।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे सोमवार 18 मई 2026 को संध्या 6 बजे। बातचीत का विषय होगा प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भोजन और देखभाल। विशेषज्ञ होंगे पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दावंडे कुलदीप नामदेव। तो साथियों, मिलते हैं अगले कृषि जगत कार्यक्रम में। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पोप मसाला। कार्यक्रम का शुरुआत हम कर रहे हैं डबल धमाल फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और साथियों ने। धुन को तैयार और लिखा है आनंद राज आनंद ने।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं खाकी फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस बोल को संगीत से सजाया है राम श्यामपत ने।

प्रीतम चक्रवर्ती के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए न्यूयॉर्क फिल्म का ये गीत। गीत रचना संदीप श्रीवास्तव की तथा स्वर दिया है KK ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा एवं हर्षित सक्सेना का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ों में, फिल्म का नाम हिट स्टोरी।

0: मैं और मिसेस खन्ना, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत, वाजिद, सुनिधि चौहान, यूवी, फरहद और राजा मुस्तक के स्वरों में। शब्द रचना जैलेश शेरवानी की तथा संगीत में पिरोया है साजिद वाजिद ने।
1: Pump it up.

0: not happening.
1: साहित कदरी की रचना में अब सुनिए खुशविंदर सिंह को। आई लव न्यू ईयर फिल्म से संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम पॉप मसाला अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कल सवेरे 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना।

कल 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप कर्नाटक शैली में एस गोविंद राजन का गायन सुन पाएंगे।

कल शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम के तहत नमूना घर की श्रीमती निर्मला गुजूर से बातचीत होगी। बातचीत का विषय रहेगा पशुपालक महिला से भेंट।

0: 7:30 पर युवानी के तहत कार्यक्रम होगा देश की शान और आकाशवाणी के 90 वर्ष गौरवशाली वर्ष पर चर्चा आप सुन पाएंगे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को आस्था और राष्ट्र की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करने की घोषणा की। सांसद विष्णुपद रे ने बिम्बरलीगंज डिवीजन में व्यापक सड़क सुधार योजनाओं की आधारशिला रखी। और समुद्री घुसपैठ को रोकने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सागर कवच अभ्यास का 14 मई से संचालन किया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: इससे पहले प्रधान

मंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाने के साथ ही हेलीकॉप्टर से सोमनाथ मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में स्थानीय कार्यों से वैश्विक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करना विषय पर शिल्प निर्माण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत योगदान के महत्व को बताना है। प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी तथा स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, जिससे वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिल सके। प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक, शोधार्थी और वैज्ञानिक भाग ले सकेंगे। यह कार्यक्रम 19 और 20 मई को श्री विजयपुरम स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में आयोजित किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी औद्योगिक इकाइयों एवं संबंधित हितधारकों को सूचित किया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उद्योग, प्रक्रिया, उपचार एवं निस्तांतरण प्रणाली अथवा औद्योगिक संयंत्र की स्थापना एवं संचालन नहीं किया जा सकता। समिति के अनुसार द्वीप समूह में कई औद्योगिक इकाइयां आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित एवं संचालित हो रही है, जो वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। सभी औद्योगिक उद्यमियों एवं हितधारकों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थापना से पूर्व CTE तथा संचालन से पूर्व CTO ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करें। निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद और सागर कवच अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने पिछले दिनों विम्बरलीगंज डिवीजन तथा नगरपालिका क्षेत्रों में विभिन्न सड़क सुधार एवं मरम्मत कार्यों की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम होपटाउन, शोर पॉइंट, बम्बूफ्लाट, टापू बस्ती, कन्यापुरम, विम्बरलीगंज, शोलबे, राइटम्यू और मनारघाट सहित कुल 19 स्थानों पर आयोजित किया गया। आज सांसद द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत हैडो, दिलानीपुर, प्रेमनगर, डेयरी फार्म, स्कूल लाइन, डॉलीगंज और ओल्ड पहाड़गांव सहित 9 स्थानों पर लिंक सड़कों के विशेष मरम्मत, नवीनीकरण और सुधार कार्यों की आधारशिला रखी गई। इन योजनाओं से क्षेत्रीय सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने तथा आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सागर कवच SKV नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन 14 मई को सुबह 6 बजे से 15 मई को शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री मार्ग से घुसपैठ तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर संभावित हमलों का तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। अभ्यास के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और बल संयुक्त रूप से भाग लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं, समन्वय क्षमता तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अभ्यास की अवधि के दौरान किसी

भी प्रकार की गतिविधियों से घबराएं नहीं तथा सुरक्षा बलों और सहभागी एजेंसियों को पूरा सहयोग प्रदान करें। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि आईआरबीएन कर्मियों के वार्षिक रेंज वर्गीकरण फायरिंग अभ्यास का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान फायरिंग रेंज बर्डलाइन और प्रातरापुर में किया जाएगा। यह अभ्यास 12, 15, 19, 22, 26 और 29 मई तथा 2, 5, 9, 12, 16, 19 और 23 जून को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक सम्पन्न होगा। प्रशासन ने आम जनता विशेष रूप से बर्डलाइन और प्रातरापुर क्षेत्र के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। निर्धारित तिथियों और समय के दौरान लोग स्वयं तथा मवेशियों को फायरिंग रेंज क्षेत्र से दूर रखें। और अब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है। नागरिकों एवं पर्यटकों को समुद्र तटों पर अत्यंत सतर्क रहने तथा मनोरंजन गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त उत्तर एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान तथा निकोबार जिलों में गरज के साथ वर्षा होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को आस्था और राष्ट्र की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करने की घोषणा की। सांसद विष्णुपद रे ने विम्बरलीगंज डिवीजन में व्यापक सड़क सुधार योजनाओं की आधारशिला रखी। और समुद्री घुसपैठ को रोकने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सागर कवच अभ्यास का 14 मई से संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV कालीघाट लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। नानकारी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर सिंधु कल दिन के 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 14 तारीख को कैम्बल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। कल सवेरे 6:15 पर MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर MV नॉर्थ पैसेज कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सवेरे स्वराज द्वीप से 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा।

एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान कल दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और जलयान की वापसी कल ही 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से जाएगा। इस बीच ये जलयान कल दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी शहीद द्वीप से कल शाम 3:30 पर श्रीविजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान की वापसी बुधवार तारीख 13 को स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप सवेरे 5:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनिए जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आप लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192240127, 03192238881 या 1070। इस सूचना व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये था जन सूचनाएं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के फनकार हैं जसवंत सिंह। आइए सुनते हैं इनके गाए चंद गज़ल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप जसवंत सिंह को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विफलता एक मंजर है, ना कि अंतिम अस्थाई हकीकत। अर्थात जीवन में अगर असफलता प्राप्त हो तो वहीं सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। यह आपको दोबारा प्रयत्न करने का अवसर देता है, और ऐसी परिस्थितियों में हमेशा हमें अपनी असफलता से सीख लेनी चाहिए और दोबारा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आज इस माह का दूसरा सोमवार है, और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। हम लबों से कुछ कह ना पाए, आखिर इश्क की जुबां क्या होती है। हम लबों से कुछ कह ना पाए, आखिर इश्क की जुबां क्या होती है। जब उनसे नजरें मिली पता लगा, जब उनसे नजरें मिली पता लगा कि मोहब्बत की फिजा क्या होती है। होश वालों को कहाँ खबर है, होश वालों को कहाँ खबर है कि सारे जहां को भुला दे वो इश्क की अदा क्या होती है।

खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे पर वो कहाँ है आए। उम्मीद हारे, चैन गवाए, बैठे हैं हम अश्क छुपाए। रुकना मुनासिब नहीं है अब, रुकना मुनासिब

नहीं है अब, लेकिन अपने गमों को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं। लेकिन अपने गमों को लेकर आखिर हम कहाँ जाएं।

हालातों से हार कर तकलीफ तो होगी ही, शिद्दत से पाना चाहोगे गर किसी को, शिद्दत से पाना चाहोगे गर किसी को, मशक्कत तो होगी ही। छाँव अगर मंजिल है तब भी, छाँव अगर मंजिल है तब भी, उस तक जाने के सफ़र में धूप तो होगी ही, धूप तो होगी ही।

जिंदगी के सफर में कभी कुछ मुकम्मल होता है और कुछ होता नहीं। जिंदगी के सफर में कभी कुछ मुकम्मल होता है और कुछ होता नहीं। हारा हुआ भी हो तब भी कोई जंगजू कभी रोता नहीं। हारा हुआ भी हो तब भी कोई जंगजू कभी रोता नहीं। सफ़र पर चलना ज़रूरी है, सफ़र पर चलना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी अपनी मंजिल का पता होता नहीं। क्योंकि किसी को भी अपनी मंजिल का पता होता नहीं।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनने पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा

0: गीत सुनना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 2-3-2-3-3-6 और 2-3-2-5-5-8। तो याद रखिए प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
1: तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कहकशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

तो इसी के साथ हमारा कहकशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं सावन की घटा फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले ने, धुन तैयार किया है ओपी नायर और गीत को लिखा है SH बर्मन ने।

मुकेश की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब सुनिए अमर प्रेम फिल्म का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

0: के बाद।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा एवं SD बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म का नाम आराधना।
3: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूँगा उसका जवाब सच सच देना। डन
4: डन
3: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना।

आपकी कसम, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

आनंद बख्शी की रचना में अब सुनिए मुकेश को। कटी पतंग फिल्म से संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन और लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम काला बाजार।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। पहले रोजगार समाचार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PM&ET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज FS अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक पद जो केवल OBC वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी फायरमैन PC FS के लिए कुल पद है 77, अनारक्षित वर्ग के लिए 41 पद, 29 पद OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर FS कुल पद है 17, अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, 6 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद होगा। सफाई कर्मचारी FS के लिए कुल पद है 2, OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोवर कुक FS के लिए 1 पद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर दफ्तरी के लिए 1 पद रिक्त है जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। इंडिया रिजर्व बट

0: बटालियन, आईआरबीएन अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए एक पद है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल पद है 29, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए 12-12 पद है। एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। कांस्टेबल वायरलेस के लिए कुल पद है 2, जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। नर्सिंग असिस्टेंट, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाटर कैरियर, इन सभी पदों के लिए 1-1 पद है जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2026 को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: अब सुनिए गौरवगान।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।

श्रोताओं, अभी आप रोजगार समाचार और गौरवगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल

0: कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
4: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से

प्रसारण मंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76015

0: पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में

0: आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा,

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 7171 7 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएंगे।

0: तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
1: हुई के महीने में
0: जी आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
1: जी।
0: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा तो उसमें आग लगने वाली है
1: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
2: जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
1: जी।
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
1: जी,
2: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है।
1: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
3: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है
1: जी। राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं जी। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
0: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम

0: पड़ जाती है, फिर हम क्या होते हैं दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो, आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
0: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो का लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है, बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस

0: फायर सर्विस या कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो
1: जी
0: मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी
0: हाँ, लिफ्ट से
1: चाहिए।
0: आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि
1: दम
0: होती
1: घुटता
0: है,
1: है फिर।
0: दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी, मैं
1: नमस्कार
2: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि
0: नमस्कार।
2: मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी। उस
1: धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए हैं,
2: सवाल यही कहना चाहूंगा।
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
2: जी। लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूं, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिलकर अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस से लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
3: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिक सिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहां बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे

0: देखा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं। तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन ले, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
2: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। स्वागत
2: दीदी, नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल
2: पूछिए। सर नमस्कार जी।
3: नमस्कार
2: जी, मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील शिवहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से।
3: जी नमस्कार विजय।
2: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
3: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लग गई तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बनके खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
3: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी के घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से।
1: जी
4: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कभी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा प्रश्न।
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
3: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते कि वहां पे जो जलने वाली चीज है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
5: लवली जी नमस्कार।

0: नमस्कार, सवाल पूछिए।
1: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
0: जी।
2: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
0: जी।
2: तो उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखें, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
0: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया
2: जाए? नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं।
3: अब मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
0: आरडब्ल्यूजे हो या कुछ भी हो,
3: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
0: एक सवाल है, पानीपत से है, ये शैलेन्द्र शेंदुरकर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकें? सीएनजी की भी हम बात करें तो सीएनजी वाहनों में बहुत आग लग रही है।
3: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला

0: कि ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई

0: सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आइडियल आप टेम्परेचर बताएं।
0: जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
2: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
0: तभी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रश्मि। दोस्तों, अगर आप भी हमारे ज़रिए आपका मन पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो फ़ोन उठाए, टाइप कीजिए फिल्म का नाम, गीत के बोल, आपका नाम और पता, और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9474234000। कार्यक्रम का पहला गीत के लिए हमें संदेश भेजा है कुंती, रितिका, अंजलि, अंजना, विभूति और प्रसन्नजीत ने। स्कूल लाइन से हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म कॉकटेल का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

झारखंड से हमें संदेश भेजा है दिव्या लीना ने, और हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं तारे जमी पर फिल्म का ये गीत।

मलंग फिल्म के इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है साउथ पॉइंट से अरविंद ने। तो आइए सुनते हैं अरविंद आपके पसंद का ये।

फरारगंज से हमें संदेश भेजा है संजना ने, हमारी दोस्त सुनना चाहती है जोश फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

हिंदी मीडियम फिल्म के इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है वंडूर से रोशनी ने, तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

dum tu ta

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि अर्थात 12 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:26 और 40 सेकंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। अनमोल विचार।
1: नर्सें सेवा, समर्पण और करुणा की जीवित मिसाल होती हैं। वे केवल मरीजों की देखभाल नहीं करती, बल्कि अपने प्यार और संवेदना से नई उम्मीद और हिम्मत भी देती हैं। दिन रात बिना थके काम करते हुए वे समाज के लिए एक सच्ची प्रेरणा बनती हैं। जहां दया और सेवा हो, वही सच्ची नर्सिंग होती है। समर्पण और करुणा का दूसरा नाम है नर्स। आइए इस दिन हम सभी नर्सों के योगदान को सम्मान दें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें।
0: ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।